बाधा कर्मपुंसा दधान सुतानता मनुष्योमत प्रसादी न भविष्यति न संशया मंत्रार्था सकला संतु पूर्णा शांत मुन्नता तत्त्वान् बुद्धिना।